अल्लाह के दीन को ऊपर नीचे करना शुरू हो जाते हैं, काट छांट शुरू करते हैं अपनी मर्जी का ताकि दीन को कर दें। कहते हैं हमें तो ऐसा दीन बताओ जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो, हम डिस्टर्ब ना हो। फिर उनसे हर किस्म की करप्शन की तवक्को की जा सकती, इसलिए कि जो अल्लाह से नहीं डर रहा फिर वो किसी से भी नहीं डरेगा। और फिर फरमाया था कि ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं कहते हैं हम ईमान ले आए, चूँकि जो अब ताज़ा मोमिन है पहले इनसे इसी रसूल के बारे में बातें सुन चुके थे, अब कैसे इनकार करें, लिहाजा उनके सामने कह देते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल हम भी ईमान रखते हैं। लेकिन जब आपस में मीटिंग्स करते हैं सीक्रेट मीटिंग्स, तो कहते हैं क्यों तुम इनको बता रहे हो वो बातें कि जो अल्लाह ने तुम्हें बताई हुई हैं, और तुम अगर इनको बता दोगे तो कल क़यामत के दिन ये लोग तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे कि इनको पता था फिर भी ईमान नहीं लाए, कितनी हिमाकत है। और अल्लाह ने फरमाया था क्या इनको नहीं मालूम कि जो ये छुपाते हैं वो भी अल्लाह जानता है और जो ये बताते हैं वो भी अल्लाह जानता है। लोगों से छुपा लेंगे तो अल्लाह से भी छुपा लेंगे, कैसी हिमाकत वाली बातें करते हैं। आयत नंबर 78, यहूदी उलमा करप्ट और यहूदी अवाम किताब खुदा से कटी हुई, डिसकनेक्टेड। कैसा मुआशरा और कैसे अकीदे वजूद में आए, दो तबकों, दो इंसानों के तबकों का अल्लाह जिक्र करता है इन अगली आयात में बहुत अच्छी तरह, ताकि फिर हम उनको देखें कि हमारे ज़माने में क्या हो रहा है। पहला तबका कौन सा जिसका अल्लाह जिक्र कर रहा है, वो अवाम जो किताब खुदा से जाहिल, और पूछो कि अल्लाह ने जो तुम्हें किताब दी उसमें क्या लिखा है, अपनी आरजुएं बताएंगे कुरान में ये लिखा हुआ हम हक पर हैं बाकी बातें, ठीक है ना। पूछो पढ़ा है, कोई नजर नहीं आएगा पढ़ा हुआ कहां, अल्लाह कहते हैं ये तुमने आरजुएं कहां से बना ली, हमारी किताब में तो नहीं लिखा हुआ। तो बिल्कुल यहूदियों को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, जब अवाम कट गई किताब से तो खुद खुद करप्ट उलमा नुमा अफराद का तबका वजूद में आया कि जो माल खाना चाहते हैं उनका फोकस है माल खाने पर, फिर वो देखते हैं कैसी बातें करें तो हमारी फीस ज्यादा पे होगी, कैसे खुश करें लोगों को, फिर किताब खुदा की तारीफ करते हैं। ये दूसरा तबका जाहिल अवाम की वजह से करप्ट दीन फरोश, दीन में तारीफ करके पैसे खाने वाले उलमा नुमा अफराद वो वजूद में आएंगे, और फिर अकीदे कैसे बनेंगे लोगों के, इस तरह की बातें इस तरह के लोगों से सुन सुन कर लोगों को खुश करने के लिए क्या बातें आएंगी कि तुम अव्वल तो दोजख में जाओगे नहीं जहन्नम में, तुम अल्लाह की फेवरेट कौम हो, तुम अव्वल तो जहन्नम में जाओगे नहीं, और अगर तुम जहन्नम में चले भी गए तो कुछ अरसा वहां तुम्हारी तफ्तीश की जाएगी, मारपीट तुम्हारी की जाएगी, फिर तुम हतमन वापस जन्नत में आ जाओगे। ये अकीदे मैन्युफैक्चर्ड, जो सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड अकीदे थे तौरात से कट कर ये वजूद में आ गए थे, अल्लाह ने इसकी मिसाल दी। अब इन आयात को आप इनके मैसेज को सुने और फिर देखें कि हमारे मुआशरे में इबरत ली गई है इस हरकत से कि नहीं वैसे ही चल रहे हैं जैसे यहूदी किया करते थे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 78 से, वमिनहुम उम्मीयून, और इनमें से कुछ जाहिल ऐसे अनपढ़, और यहां अनपढ़ से मुराद यानी तौरात के अनपढ़, वैसे तो पता नहीं पीएचडी की डिग्री लेके फिर रहे हो, तौरात के अनपढ़ इधर से जाहिल। व मिनहुम उम्मीयून ला यअलमून अलकिताब इल्ला अमानी व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और इनमें से अब बताया जा रहा है कुरान पढ़ने वालों को, ये यहूदी जो हरकतें कर रहे हैं, उलमा जो हरकतें कर रहे हैं, अवाम जो हरकतें कर रहे हैं, बेस क्या है, इनमें से कुछ अनपढ़ ऐसे हैं कि जो उन्हें अल्लाह की किताब का कोई इल्म नहीं सिवाय आरजुओं के, हम जो इनकी आरजुएं हैं समझते हैं किताब खुदा में वही लिखा हुआ, और ये और कुछ भी नहीं बस गुमान के पीछे चलते हैं, गुमान बन, इन्होंने बातों पर सुन सुन के अब इनके गुमान बन गए कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा, हालांकि किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आयत नंबर 79, फवैलुन, अब उन उलमा का तज़करा है कि जो दीन अपने पास से घड़ कर और कहते हैं ये अल्लाह का दीन है, उनके बारे में कहा जा रहा है, फवैलुल लिल्लदीन यक्तुबून अलकिताब बिअयदीहिम थुम्मा यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, पस हलाकत है यानी अजाब है और बर्बादी है उन लोगों के लिए जो किताब को अपने हाथ से लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से आई। अवाम तो जाहिल, उन्हें पता ही नहीं कि

में क्या लिखा हुआ, लिहाजा ये अपनी मर्जी से बात घड़ते हैं, लिख देते हैं और कहते हैं ये अल्लाह की तौरात में। तौरात तारीफ इसी तरह हुई थी। हमारा कुरान का वर्जन क्या है, कुरान के मतन के महफूज होने की अल्लाह ने जमानत ली है कि मैं इसका मुहाफिज हूं, लिहाजा कुरान के साथ और गेम करते हैं। आयत पढ़ी और फिर तर्जुमा अपने अपने ख्यालात का, अपने मर्जी का तर्जुमा वो कर दिया, और अवाम को पता ही नहीं है कि, क्योंकि आयत पढ़ी कभी नहीं, पता ही नहीं है कि ये आयत है क्या, इसका मतलब क्या, जो मर्जी बोलने वाला बता दे वो बता दे। किताब को अपने हाथों से लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह की जानिब से है, क्यों ये हरकत करते हैं, क्या जरूरत पेश आई इतना बड़ा जुर्म करने की कि अल्लाह की अमानत में खयानत कर रहे हैं, क्या सबब बना। लियश्तरू बिही तमनन कलीला, ताकि खा सके दुनिया का थोड़ा थोड़ा माल लेके खा सके। इनको पता चल गया अवाम की नफ्सियात का कि अवाम को अगर सही दीन बताओ उन्हें मजा ही नहीं आता, वो जंपे ही नहीं लगाते अपनी सीटों से, कलाबाजियां ही नहीं मारते, लिहाजा उनको ऐसी कुश्ती खिलाओ, ऐसी तकरीर करो कि उछल उछल के तुम्हें दाद दे। कब दाद देंगे, जब मुफ्त में जन्नत में जा रहे हो कुछ जिम्मेदारी लिए बगैर। तो तहरीफ करके दीन बताओ, शॉर्टकट्स बताओ दीन में, दीन की शक्ल ही बिगाड़ दो ताकि लोग करप्ट हो जाएं, गुनाहों में पड़ जाएं। जाहिर जब खुदा का खौफ निकल गया, जब जहन्नम का खौफ निकल गया, तुम तो पक्के जन्नती हो, तो फिर जो दिल में आए करे वो, फिर तो उसको लाइसेंस मिल गया। जो दीन आया था उसको रोकने गुनाह से, उस दीन के नाम पर उसको लाइसेंस दे दिया गया, तू तो हतमन जन्नत में जाएगा। उसको ये नहीं कहा हुसैन हुसैन करने का तकाजा क्या है, हुसैन के दुश्मनों की सिफात तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, हुसैन के साथ चलने वालों वाली सिफात तेरे साथ तेरे पास होनी चाहिए। ना जी ना, बस तहरीफ करके, और तहरीफ होती तब है जब मुकद्दस हस्ती का नाम लिया जाए। शैतान थोड़ी आके कहता है इमाम हुसैन की ना मानो, मैं इबलीस हूं मेरी मानो, लोग तो जूते मारेंगे। मेकअप करके आते कहता है मैं इमाम हुसैन का पैगाम दे रहा हूं, मैं ईसाइयों से कहता है मैं ईसा का तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, ईसा के नाम पर कोई और चीज बता दी, रसूलुल्लाह के नाम पर कोई और चीज बता दी, मौला अली के नाम पर कोई और चीज बता दी। कब ये हरबा कामयाब होता है, कब ये हरबा कामयाब होता है कि जब अल्लाह की किताब से कौम दूर हो जाए। ये कुरान की आयात ये इबरत बता रही है कि ये अवाम किताब से कटी हुई और करप्ट उलमा नुमा अफराद दीन की तारीफ करने वाले करते किस लिए, ताकि इसके जरिए कलील मुआवजा हासिल कर सके। कलील अल्लाह क्यों कहता है, थोड़ा क्यों, इसलिए कि अगर ये अमानतदारी से खुदा के दीन को बताते लोगों को, तो ये तो अंबिया के साथ दर्जा पाते, अंबिया के वारिस कहा गया था इनको, उलमा को, जिन्हें किताब का इल्म था, जिन्होंने पढ़ा मुतालात की तैयारी की। लेकिन अब माल दुनिया पे गिर पड़े और जितना भी सारी दुनिया का माल है, तब भी आखिरत के अजर के मुकाबले में कुछ भी नहीं, लिहाजा अल्लाह इसे कलील कहते। अब इन्होंने दो काम किए थे, एक किताब लिखी थी अपने पास से और एक उसके जरिए कमाई की थी। अल्लाह ने दो दफा तकरार की, क्या फरमाया, फवैलुल लहुम, इनके लिए हलाकत है, मिम्मा कतबत ऐदीहिम, जो इन्होंने अपनी मेहनत की थी। ठीक है ना, वो कहते हैं ये गरीब की अपनी मेहनत है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ना आपने पहले कभी सुना होगा, ये गरीब की अपनी मेहनत है। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, जो इन्होंने खुद से घड़ के लिखा उस पर भी इनके लिए अजाब और बर्बादी है। वह वैल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और दूसरी फिर इनके लिए वैल मौत और अजाब और हलाकत है, जो कमाया इन्होंने, जो माल कमाया अल्लाह के दीन को तहरीफ करके बेचकर, उसके लिए डबल अजाब इनको दिया जाए। आम आवाम को उसके मुकाबले में इनका अजाब डबल होगा। बस ये दो तबके हो गए, एक अवाम किताब से जाहिल, एक उलमा नुमा करप्ट लोग माल खाने वाले दीन को तहरीफ करके बताकर अकीदों का, अकीदों की मिसाल। वकालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा, और ये कहते हैं कि हमें तो जहन्नम की आग गिनती के चंद दिनों के अलावा छू ही नहीं सकती, हम एक्सेप्शनल केस हैं, हम एक्सेप्शनल केस हैं। कुल